छह पल में खोल दूंगी और छह पल में बांध दूंगी। प्यारे आप अपनी कपट की भैंस को खोलो।